अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यूँ? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ, बुड़ी 331 525 786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: FM Network for KTN News.
1: राजू ते कौमी असेंबली में पेश कई वी डील खां सवाइ बि ईरान जो यूरेनियम हासिल करे सघूं था। फौजी कार्रवाई थिए या गाॾियूं, कामयाबी अमरीका जी थींदी। अमरीकी सदर ट्रम्प जो व्हाइट हाउस में तकरीब ते ख़िताब, संदसि चवण हो त मुआहिदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। असां ईरानी क़यादत ऐं नेवी ऐं फिज़ाया खे ख़तम करे छॾियो। ईरानी सुप्रीम लीडर सां मुलाक़ात नथो करणु चाहियां, पर मुआहिदो थियण जी सूरत में मुलाक़ात मुमकिन आहे। लबनान सूरत हाल ते नज़र रखणी पवंदी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ऐं रूसी सदर प्यूटन मुलाक़ात कनि त सुठो लॻंदो। भारत सां वापारी मुआहिदो जल्द थी सघे थो। ईरान सां मुआहिदे बाबति बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी।

नथो सम्झां त पाकिस्तान अची वञे कंट्रोल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने सम्झूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जॾहिं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि।

0: फैज गंज वेझो घोट अलाजड़ियो शहर में कारे इल्जाम हेठ भाव हथा भेण कतल जवाबदार अली रजा शर कुहाड़ी जा वार करे टिन बारन जी माओ सुगरा के कतल कयो जवाबदार फरार न्यूसदाबाद में कौमी शाहराह जे होटल ताना मरम लाश हथ लाश अस्पताल मुंतकिल पुलिस फौज लाश जी सुणप लाइ कोशिशू जारी आहिनि। राधन ग्रिल स्टेशन के चौथे डी पर बिजली बहाल न थी सकी अंगारे डी का बंद थियल बिजली की फरहमी बहाल न थे सबब समय गोठन की बिजली बंद पयल ग्रिड स्टेशन के बिजली की फरहमी मोतरो सबब राधन थड़ी मोहब्बत नौगोट शाहपंज समेत इन समय गोठन बिजली का महरूम मुसलसिल बिजली बंद है जैं सबब वरी अंग में इलाकेवासी सख्त अजाब भोगे रहा है। सख्त गर्मी सबब चार डी का बिजली बंद पयल है रवासन तकलीफू वी व सिंधड़ी में घरोर शाख के पुछड़ी ताई पानी न पहुंचने खिलाफ आबादकरन जो एहतजाज खेपरो मीरपुर खास रोड से धरणो खाया पो आबादकरन जो आपाशी अमले ते मुंड के आबादकरन के पानी बेकरो करण जो इल्जाम पानी चोरी रोके घरोर शाख के पुछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252578 6।
7: जी हा 2315525786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आप
4: नुसरत फतेह अली जी को नुसरत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज़ ही तुम्हारे सुंदर सामातू के प्रोग्राम के आगाज में अच्छे तरह एंजॉय किया।

तहली खानी खूबसूरत आवाज़ जो सुंदर समातू तो मुझे मीठा तीन तुम प्रोग्राम में शामिल बजरिया एसएमएस जो तरीकेकार सवलो है आसान है पंज मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एम आर ओ लिखो स्पेस स्पेस का लिखो पांजे नालो पांजे गोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकलियो असान हां 888-1 ते नंबर ते जी तवाजा मैसेज इंदा असा उनके पांजे प्रोग्राम जी सूह भी बनाए वी प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हर जुमे जी यारह वगे का वी एक वगे ती एफएम नेटवर्क ऑनियर किया जैमें असा सा मिठा मानू हूं लाड़काने जा सखर जा मीरपुर खास जा मोरो जा उन खां अलावा हुंदा हैं मेहरापुर मटियारी मातली सकरण जा त सकरण जा दोस्त भी शामिल थींदा आहिनि असांजे प्रोग्राम में अहिड़े तरीक़े सां मोरो वारा दोस्त बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा आहिनि त कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि हुननि जी तरफ़ बि हलंदासीं उन खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं निखन नाज़ जो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे जेको मुंहिंजो त पसंदीदा आहे बल्कि अव्हां जो बि उहो पसंदीदा ई सॉन्ग हूंदो त अहमद ख़ान खोसो पाण खे ॿुधी रहियो आहे मोरो शहर जे शायदि अदा जन लिखियो आहे हा ठीकु आहे दादू रोड खां अदा अहमद खान पहिरियों दफ़ो असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो आहे महिरबानी अदा अहमद तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो लख कुर्ब लख अहसान अव्हां जा तव्हां असांजो शो ॿुधी रहियो ऐं शो खे पसंदि करे रहियो अदा जन फरमाइश कई त असांखे मुमताज़ मौलाई जी आवाज़ में को सॉन्ग ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा अथई ॻोठु बाड़ो खान लाशारीअ खां ग़ुलाम नबी लाशारी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो हुन सां गॾु मोहम्मद आचार लाशारी आहे ऐं उहो चवे थो अस्सलाम वालेकुम अदा गुलाब त वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा साईं कहिड़ा हाल नवां जा ठीकु आहियो त भई सही आहे अव्हांजी ऐं अदा जन दुआ करे रहिया आहिनि ऐं उन सां गॾु आहे हाजी नकी ज़रदारीअ खे बि सलाम चई रहिया आहिनि ऐं चवनि पिया त जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उन सभिनी खे सलाम चइजो ऐं मुमताज़ लाशारी जी आवाज़ में फरमाइश कई अथनि त हाज़िर प्यारा मुमताज़ लाशारी जी आवाज़ में बि तव्हांखे कलाम ॿुधाईंदासीं तव्हां प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो तव्हां जूं मुहबतूं आहिनि तव्हांजा कुर्ब आहिनि तव्हांजो प्यार आहे घोट मोहम्मद याकूब संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो अदा जन बि असांजे हर शो में शामिल थींदा आहिनि अदा हारून कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु आहियो हुते बि सही आहे तव्हांजी महिरबानी मिठा तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो हुन जे लाइ खोड़ सारियूं मुहबतूं खोड़ सारो प्यार अव्हां जे लाइ त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिल थी सघो था ऐं अॼोके जेको प्रोग्राम आहे उन में सिर्फ़ु मोरो जा मैसेज अची रहिया आहिनि ॿियनि दोस्तनि जा मैसेज न आहिनि पहुता त लॻे थो मोरो वारा सुजाग आहिनि बाक़ी ॿिया अञा थोरी निंड में सुता पिया आहिनि बाबा गर्मी लॻी पई आहे तमामु घणी निंड मां जाॻो ऐं ॿी अञा तव्हांखे ॿी हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि मां ॿुधाईंदो हलां त ईंदड़ हफ़्ते खां वठी अञा वधीक तेज़ गर्मी थींदी ऐं ईंदड़ हफ़्ते में जेको असां शो कंदासीं न उहो शो तेज़ गर्मियुनि में हूंदो।

0: तफरी से रिश्ता जुड़ो, सुनते रहो जी एफएम 88.8 मोरो, मोरो की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White H Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: बीहर पढ़न बिया बल बल पढ़न दे यार सजर दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों का फर्थी वन ए केरी हूं दी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करें न अंधाई
1: अर्दा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था तो तू पहले मैं वो सम्मेलन नवन तुझा दुश्मन टोके होते तुझा वेरी मारे वे जाना अर्ज करे पियो मां मौत खाना थोड़ जा बहरहाल महबूब जो दीदार जरूर करणो पवंदो मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां पर छा करियां मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

प्रोग्राम के दोस्तों जो मैसेज भी शामिल कह गोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो का मोहम्मद हारून संदीलो पंज प्रोग्राम बुधे पो उन गड है अब्दुल हमीद संदीलो चवंदा आदा आबदा परवीन का सॉन्ग सुनाओ तो हाजिर मुझा मिठा सही आबदा परवीन जो छो ना कलम बुधाईंदी आबदा परवीन बेहतरीन सिद्ध की रागी है जरूर तुम सॉन्ग बुधाईंदम शहर कमरदीन का शमन अली सोलंगी पंजे प्रोग्राम बुधे पो उन एहतशाम समी समीउल्ला नसरुल्ला सोलंगी चवन था आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है फरमाइश शमन अली मिराली के कलाम की कई अथन मेहरबानी मुझे मिठा सही तवे भी पसंद जो कलाम जरूर बुधाईंदी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद दादूमर पुल का असो बाय मोहम्मद हसन मल्ला गए मजहर अली मल्ला चवन था गुलाब कहाँ गुलाब खान कैसे हो प्लीज प्ले जवार फकीर का सॉन्ग सुनाओ और उस्ताद बुखारी की शायरी में अदा मोहम्मद हुसैन तवा ठीक है हो तबियत सही है तवाजी वालेकुम असलम अदा बिल्कुल कोशिश कंदे तवे तवे पसंद जो असा कलाम बुधरायूँ इनशाला टाइम बचो तो जरूर तवे तवे पसंद जो कलाम बुधाईंदी गड है सखर का आई अब्दुल रहीम अदाजन की फरमाइश है तो असा के अहमद मुगल के आवाज में कलाम बुधाया तो बिल्कुल मुझा मिठा अहमद मुगल जो कलाम तवाज लाए हाजिर है।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग्रम,
1: सिंध के माथे का झूमर।
2: GFM 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

11 वगे खां वठी 1 वगे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे। समुझ में छा तीन अज है 5 जून। 5 जून तवे याद है छाजो दिहाड़ो हों लगे तो कंखे याद ना है। जी हाँ, माहौलियाती तब्दीली जो दिहाड़ो है। ऐसो केडो अहम टॉपिक है न माहौलियाती तब्दीली। माहौलियाती तब्दीलियों के करो केदा वड़ा अस नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। हर साल 5 जून से सारी दुनिया इन वर्ल्ड यानि आलमी माहौलियात जो ढी मल्हाईंदी आहे। इन ॾींहं खे मल्हाइण जो मक़सद माण्हुनि में माहौल जे तहफ़ुज़ बाबति शऊर पैदा करणु, धरतीअ खे आलूदगीअ खां बचाइण जे लाइ गॾियल कोशिशुनि खे हथी ॾियणु आहे। तव्हांखे ख़बर आहे असांजो माहौल कुदरत जो हिकु क़ीमती तोहफ़ो अथव, जंहिं में हवा, पाणी, ज़मीन, वण ॿूटा ऐं जानदार शामिल आहिनि। अफ़सोस जो इंसानी सरगर्मियुनि सबब माहौलियाती आलूदगी, बेलन जी वाढ़ी, पाणीअ जी खोट ऐं मौसमी तब्दीलीअ जहिड़ा संगीन मसला पैदा थी रहिया आहिनि। उन्हनि मसलनि जे नतीजे में गर्मी पद में इज़ाफ़ो थियो आहे। गैर मामूली बरसातूं, ॿोॾूं, ॾुकार, इहे समूरियूं सूरत हाल जेके आहिनि उहे सिर्फ़ इन्हनि जेके माहौल या इंसानी सरगर्मियूं आहिनि जेके माहौल लाइ नुक़सानकार आहिनि उन्हनि सबब वञी करे थी रहियूं अथव। आलमी माहौलियात जो ॾींहुं असांखे उहो अहसासु ॾियारींदो आहे त माहौल जी हिफ़ाज़त सिर्फ़ हुकूमत जी न पर हर फर्द जी ज़िमेवारी आहे। जेकॾहिं असां वण पोखींदासीं, पाणी ऐं बिजली जो सही इस्तेमालु कंदासीं, प्लास्टिक जो इस्तेमाल खे घटाईंदासीं ऐं सफ़ाई जो ख़ासि ख़्यालु रखंदासीं त माहौल खे बहितर बणाए सघंदासीं। अॼु जे दौर में सिंध समेत सॼो पाकिस्तान मौसमी तब्दीलीअ जे असर खे महसूस करे रहियो आहे। शदीद गर्मी, पाणीअ जी खोट ऐं माहौलियाती आलूदगी असां लाइ वॾा चैलेंज बणिजी चुका आहिनि। उन करे ज़रूरी उहो आहे त असां माहौल दोस्त रवैया अख़्तियार करियूं ऐं ईंदड़ नसलनि जे लाइ हिकु साफ़, सिहतमंद ऐं सरसब्ज़ धरती छॾे वञूं। अचो त आलमी माहौलियात जे ॾींहं जे हवाले सां अज़म करियूं त पंहिंजे माहौल जी हिफ़ाज़त कंदासीं, वधीक वण पोखींदासीं ऐं धरतीअ खे सरसब्ज़ ऐं ख़ूबसूरत बनाइण में पंहिंजो किरदार अदा कंदासीं, छो त सिहतमंद माहौल ई बहितर ज़िंदगीअ जी ज़मानत आहे।

0: ये एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: नई कहानी नए सरगम
2: रेडियो सरकारी इंकलाबल फोटो सरकारी से मुलाकात कंदो टेथी दो 9 जून ते सरकारी सर्वे जारी कर वेंदो वफाकी हुकूमत पारां नए माली साल जे बजट 10 जून ते قومی असेंबली में पेश वेंदी डील खां सवाइ भई ईरान जो यूरेनियम हासिल करे सघूं था पोइ जी कार्रवाई थिए या ॻाल्हियूं आम कामयाबी अमरीका जी थींदी अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकलीफ़ खिताब में चवण हो तो मुआहदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे असां एटमी फिज़ाए खे ख़तम करे छॾियो ईरानी सुप्रीम लीडर सां मुलाक़ात नथो करणु चाहियां पर मुआहदो थियण जी सूरत में मुलाक़ात ममकिन आहे लबनान सूरत हाल ते नज़र रखणी पवंदी यूक्रेन सदर अज़रस्की ऐं रूस सदर प्यूटन त सुठो लॻंदो भारत सां वापारी मुदो जल्द थी सघे थो ईरान सां मुआहदे बाबति जल्द ख़बर पइजी वेंदी ईघर वज़ीर सिकंदर मोमनी जी पेश वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात पाक ईरान लाबाने खिते सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल चिकना में घटताई ऐं सलामती वारनि मामलनि ते बि ॻाल्हि जी ॾे वठि कई वई ॿिन्ही घर वज़ीरनि चिकना ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशूं जारी ते ज़ोर भरियो नथो समझा पाकिस्तान दिन जे कंट्रोल में आहे पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने समझूं था रूसी सदर प्यूटन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि फैज़गंज वेझो ॻोठ अलाजोड़ियो शहर में कार इल्ज़ाम हेठि भाउ सां भेण क़तल जवाबदार अली रज़ा शहर कुहारी जा वार करे टिन ॿारनि जी माउ सुगरा खे क़तल कयो जवाबदार फरार न्यूज़ हैदराबाद में कोई शारा जे होटल तां लाश हथ पुलिस मौजिब लजी सुञाणप कराची वासी इरफान पठाण जे नाले सां थी आहे पती गाॾियुनि जो मिस्त्री हो

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया पर इन्हें किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो कीअं थियो ऐं छो सडियो त जनी लाए मोआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो इहो किसो तव्हांखे आस ई करे थो ॿुधायां आश्क वेचारो जड़ा बीमार थियो पंहिंजे माइटनि ऐं दोस्तनि खे चई त मूंखे पंहिंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आउं उते मरंदुसि जो मुंहिंजो महबूब मुंहिंजो कुल्हे कांधी थिए

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM ETH Network, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
5: जी हाँ, बिल्कुल। जो दिलवारो मानू होंद उन विसारण इन दुनिया जो तमाम दुखे का दुखियो कम होंद, खास करे वो मानू जैके तवा मोहब्बत इश्क चाहत इखलाकी नमूनन सा तमाम घणो बुलंद वबाला रखे होजे, तो उन्हें के विसारण तमाम घणो हिन दौर में दुखियो कम है। केतरी भी दुनिया तरक्की करे वने, केतरा भी मानू तरक्की करे वन, कड़े किस्म जा भी माहौल पैदा थी वन, कड़े किस्म की भी तरबियतू अची वन, कड़ा प्लेटफॉर्म्स अची वन, कड़े किस्म जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज होजन, पर उन बावजूद जो दिल है न, इंसानी दिल जी कुदरत की तरफ का मिलियल एक कुदरती तोहफो है, उन अंदर समायल मानू पांजी अहमियत के कदें भी ना विसारे सको, कदें भी घटजी भी न सघी है। दुनिया की तेज तरीन तरक्की याफ्ता जो दौर हले पो, उन तरक्की याफ्ता दौर में भी अच्छा अज भी मानु की दिलन में मोहब्बतू ना रही, बिल्कुल मानु की दिलन में मोहब्बतू आन, मानु की दिलन में प्यार भी है, मानु की दिलन में इखलाक भी है, मानु की दिलन में खुलूस भी है, मानु की दिलन में मोहब्बत भी है।

त मुंहिंजा मिठा से कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, हुन मैसेजनि जी तरफ़ हलंदासीं। मैसेजनि खां पोइ तव्हांखे शमन अली मीराली जो हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त ट्रेक आहे, उहो ॿुधाईंदासीं। त असां सां गॾु आहे फज़ुलाबाद खां ठरी मीरबा, अच्छा ठरी मीरबा खां असांजो प्यारो भाउ अब्दुल हक शर चए थो, गुलाब भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा है, असांखे ढोल फ़क़ीर जो कलाम ॿुधायो। त हाज़िर मुंहिंजा मिठा, तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। अदा मोहम्मद हारून संदीलो पाण खे ॿुधी रहियो आहे, ॻोठु मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां। अदा हारून, तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग मां प्ले कयो आहे, ऐं उमेद तव्हां उहो ॿुधो बि हूंदो, इंजॉय बि कयो हूंदो, ऐं तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो, छो जो आबदा परवीन शइ अहिड़ी आहे, ऐं उन जा सॉन्ग बि अहिड़ा ई हूंदा आहिनि जो हर माण्हूअ खे पसंदि अचनि। शमन अली मीराली जी ख़ूबसूरत आवाज़ ताईं तव्हांजो सुंदर समातो।

शमन अली मिराली जो खूबसूरत आवाज ए तवा जो सुंदर समाधु तो प्रोग्राम में दोस्तों मैसेजेस भी गुड गुड शामिल कंदा था हलो जे के प्यार ए मोहब्बत मध्या असान दे करे रहया आहिन यासीन गुजारो सकरण खा पांच प्रोग्राम में शामिल थियो आहे एदा चवन था त असके फोटो जरदारी जो कलाम बुधरा हाजिर प्यारा

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना। मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हम वो बीह तमाम सभी मुझे मिठन प्यारन भारन ए भेनरों के प्रोग्राम में भलीकार प्रोग्राम जहाँ आखिरी लम्हा भी आन प्रोग्राम जो वक्त भी पी पुजाणी से पहुंचने वो थी वो है इंटरनेट स्लो हुजण जे सबब काफ़ी दोस्तन जा मैसेज अञा थोड़ी असांखे रिसीव न आहिनि थी सघिया ऐं जिन जा मैसेज रिसीव न थी सघिया आहिनि या असां हुन खे प्रोग्राम में शामिल न करे सघिया आहियूं त उहे दिलमी बिल्कुल बि न कजो को मसलो न आहे वरी इनशाला ताला आयाती रही त वरी ईंदड़ जुमे वारे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं पाण गॾु हूंदासीं ऐं पोइ हुन में तव्हां जा मैसेज बि पढ़िबा तव्हांजे पसंदि जा तव्हांखे सॉन्ग बि ॿुधाइबा ऐं तव्हां सां प्यार भरियूं कचहरियूं बि कबियूं त प्रोग्राम हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक मुंहिंजे प्ले लिस्ट में आहे हुनखे बि प्ले कंदासीं पर हुन सां गॾोगॾु तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि मां चवां त ज़िंदगी में ॾुखिया वक़्त आज़माइशूं ऐं तकलीफ़ूं हर इंसान ते अचनि थियूं अहिड़ियुनि हालतुनि में सब्र ई उहो सहारो आहे जेको इंसान खे मज़बूत रखे थो। अल्लाह ताला क़ुरान मजीद बि फरमायो अथव सब्र कंदड़नि सां बेशक अल्लाह सब्र कंदड़नि सां गॾु आहे। सब्र जो मतिलबु सिर्फ़ तकलीफ़ बर्दाश्त करणु पर अल्लाह ते भरोसो रखंदे साबित क़दम रहण बि आहे। जॾहिं इंसान सब्र करे थो त अल्लाह ताला उन लाइ आसानियूं पैदा करे थो, दिलि खे सुकून ॾिए थो ऐं इनाम अदा करे थो। तंहिं करे जेकॾहिं ज़िंदगीअ में का परेशानी डुख या आज़माइश हुजे न त मायूस न थियो, सब्र दुआ ऐं महिनत सां अॻिते वधंदा रहो, छो त हर राति खां पोइ सुबुह ज़रूरु ईंदी आहे ऐं हर तकलीफ़ खां पोइ आसानी अची वञे थी। सब्र कयो, अल्लाह अव्हां सां गॾु आहे ऐं संदसि रहमत हर ॾुखी घड़ीअ खां वॾी आहे।

मंदूर सखीराणी जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातू त मुंहिंजा मिठा सिंह प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती जो वक़्तु पहुची वियो आहे। पंहिंजी पुॼाणीअ ते वञण खां पहिरीं हमेशह वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखंदा कयो, पंहिंजनि दोस्तनि जो मिटनि माइटनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो, दोस्तनि जो ऐं ख़ासि तौर ते जेके ही तेज़ तरीन गर्मियूं हली रहियूं आहिनि गर्मियुनि जे ॾींहनि में पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो। हिन वक़्ति वेकेशन्स हली रहियूं आहिनि, मोकलूं हली रहियूं आहिनि गर्मियुनि जूं, पर ॿारनि खे ट्यूशन वग़ैरह बि ॾींदा कयो। अगरि माउ ॿारनि जी पिढ़ लिखियलु आहे त उहा पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ज़रूर ॾिए, ऐं जहिड़े तरीक़े सां घर में हुननि खे तालीम मिलंदी, स्कूल वारो माहौल मिलंदो, त हुननि खां जेको स्कूल जो कयल कमु आहे न उहो हरगिज़ न विसरंदो। ऐं पंहिंजे नियाणियुनि खे दीनी तालीम ज़रूर ॾियो ऐं दुनियावी तालीम बि ज़रूर ॾींदा कयो। उमेद आहे मुंहिंजे ॻाल्हियुनि ते अमल कंदा। ऐं अॼोको ॾियारो जेको आहे दुनिया में माहौलियाती तब्दीलीअ जो ॾियारो आहे, त अॼु हिकिड़ो वण ज़रूर पोखजो, नंढड़ो हुजे वॾो हुजे जेतिरो हुजे कोशिशि कजो हिकिड़ो वण ज़रूर पोखियो, ऐं उहो वण पोखे करे तव्हां असांखे फोटू व्हाट्सअप कयो। ऐं उमेद आहे त तव्हां मुंहिंजो इहो शवण वठंदा, इनशाला ताला हयाती रही त वरी तव्हां सां गॾु गॾु हूंदासीं। ऐं मुंहिंजे प्ले लिस्ट में हदीका कयानी जो आवाज़ आहे ॾाढो ज़बरदस्त, त हदीका कयानी जे आवाज़ सां गॾोगॾु हिन प्रोग्राम जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजे ॿुधण ते। हयाती रही त वरी गॾु हूंदासीं। अलह वाही अलह निगहबान।

0: अब आप सुनेंगे GFM
1: कच्चों खत्म कर रहे हैं। हिमाचला नायब वजीर आजम इसाक डारा सदर आसिफ जरदारी ए बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात कंदो। वफाकी काबिना जे इक़्तिसादी राबता कमेटी जो इजलास पर कुछ देर में शुरू थियण वारो। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास वट जो डील का सिवाय भी ईरान जो यूरेनियम हासिल कर सकूं था फौजी कार्रवाई थिए या गाड़ियों कामयाबी अमरीका जी थी। अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीब के खिताब से चवण हो तो मुआहदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सके। असा ईरानी क्यादत नेवी ए फिजाया के खत्म कर छ्यूं था। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नथो करण चाहें पर मुआहदो थियण जरूरत में मुलाकात मुमकिन है। लबनान सूरत हाल से नजर रखनी पवी। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ए रूसी सदर प्यूटन मुलाकात कन तो सुठो लगन। भारत से व्यापारी मुआहदो जल्द थी सके तो ईरान से मुआहदे बाबत जल्द खबर पेजी वी। ईरानी घरू वजीर सिकंदर मोमनी के बिश्कक में घरू वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक ईरान लागापन खिते के सूरतहाल से गाल बोल। छिकटान में घटा ए सलामती वाले मामले से भी ख्याल की डे वरत कई वही। बिन्हीं घरू वजीर छिकटान के खात्मे ला सिफारिशी कोशिशों जारी रखने जोर भर। नथो समझा पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है। पाकिस्तान भारत में सरहदी मसलन के बेहतर नमूने समझौ था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है त पाकिस्तान वो मुल्क है जैसा मुख्तलिफ मुल्क मजबूत ए मुस्तहक लागापा। रूस ए चीन जा लागापा भी मजबूत है। फैजगंज वेझो गोट अला जोड़ो शहर में कारे इल्जाम हेठ भाव हथा भेण कतल। जवाबदार अली रजा शर कुहाटन जा वार करे टेन बार माओ सुगरा के कतल कर जवाबदार फरार। न्यूसैदाबाद में कौमी शाहरा के होटल तां लाश हथ। पुलिस मूजिब लाश की शणप कराची वासी इरफान पठान हाल से की है। गाड़ियों जो मिस्त्री हो

राधन किरण स्टेशन जे चौथे ॾींहं बि बिजली बहाल न थी सघी। राधण थरली मोहबत नवगोट शाह पंज समेत ॿियनि ॻोठनि बिजली खां महरूम। सख़्त गर्मी सां प्रवासी परेशान। मीरपुर माथेरो मां बि वकीलनि जो घोट थी सघे। चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली जी बहाली लाइ एहतजाज। बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सां शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में पाणी जी शदीद खोट। रवासियुनि जो एहतजाज। बिजली बहाल करे पाणी फराहम करण जो मुतालबो।

सिंधड़ी में गरुड़ चाक के पुछड़ ताई पानी न पहुंचने खिलाफ आबादगर जो एहतजाज छिपड़ो मीरपुर खास रोड से धरणो बहाय पो आबादगर जो आपाशी अमले से मुंड के आबादगर के पानी देखो।

फैज़गंज अदालत में पानी की खोड़ खिलाफ भुसे जी आबाद दरख्वास्त बुधणी अदालत ईंदड़ बुधणी से चीफ जस्टिस रायक सिंह खैरपुर के जाती हैसियत में तलब कर वरतो। एसडीओ के कावड़ जो इजाज टिन दिन में पुछड़े ताई पानी पहुंचाए तस्वीरों से गर्ज रिपोर्ट पेश करने जो हुक्म। सिंध के मुख्तलिफ शहर में एसटीपी जा एहतजाज शहीद वेमन के बाजियाब कराए महंगाई के जब्त आने जो मुतालबो। कनकोट चंबर फया सिटी वाड़ो ए बिन शहर में एसटीपी पारा एहतजाज किया वो जायज सिंध में मनचाज विक्रो जारी है। अमन अमान की सूरत हाल भी खराब है, अमन बहाल कराया वाले।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।
3: शान रिज़ालत मौला

0: सतरोज सजन ते पान करो तब धंधा।
1: इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जने पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं, ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमा।

ऐसा नारा लगाएं, इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बाबा से बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बाबा से बुलंद।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समा फरमाए बाबाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बाबाजे बुलंद, हैदर वर्गा सकीन कोई देखी आए जग सारा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: फैज़गंज वेझो घोट अलाजड़ो शहर में कारे इल्ज़ाम हेठ भाउ हथां भेण क़तल। जवाबदार रज़ा शरफ कुहाड़ी जा वार करे टिन ॿारनि जी माउ सुगरा खे क़तल कयो, जवाबदार फरार। न्यूसदाबाद में क़ौमी शाहराह जे होटल तां लाश हथ, पुलिस मूजिबि लाश जी सुञाणप कराची वासी इरफान पठाण जे नाले सां थी आहे। पोती गाॾियुनि जो मिस्त्री हो। रांदण ग्रिड स्टेशन जे चौथे ॾींहं बि बिजली बहाल न थी। रांदण थड़ी मोहबत नौ घोट शाह पंज समेत समी ॻोठनि जी बिजली खां बहिरूम। सख़्त गर्मी सबबि रहवासी तकलीफ़ में। मीरपुर माथिलू में बि वकीलनि जो घोटकी ज़िले जे चइनि ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली बहाल लाइ एहतजाज। बिजली बहाल करण जो मुतालबो। सखर में बि गुज़िरियल ॿिनि ॾींहनि खां बिजली बंदि सबबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में पाणी सरीफ़ खोड़ पैदा थी वई। रहवासियुनि जो एहतजाज। बिजली बहाल करे पाणी फराहम करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: वफ़ाकी हुकूमत जो कराची शहर के मुख़्तलिफ़ मनसूबन लाइ फंड जारी रखण जो फैसलो। कराची रुस्तम गेटन ऐं पाणी जे मनसूबन लाइ बि पैसा रखिया वेंदा। वफ़ाकी बजट दस्तावेज़नि मूजिब कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1.98 करोड़ रखण जी तजवीज़। ज़िले ओलह जे मनसूबनि लाइ 26 करोड़, नाज़िमाबाद ऐं लियाकताबाद जे मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी तजवीज़। लांडी ज़मान कोरंगी टाउन जे मनसूबनि लाइ 35 करोड़ रखिया वेंदा। कोरंगी ऐं मलीर ज़िलनि जे मनसूबनि लाइ 5 करोड़ रखण वारे तजवीज़ बि बजट में शामिल। कराची में जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स ऐं रिसर्च सेंटर जे क़याम लाइ बि 40 करोड़ रखण जी तजवीज़। नेशनल रिसर्च एंड फिज़िबिलिटी केयर लाइ बि 39 करोड़ रखण जी तजवीज़। कराची में बि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जे क़याम लाइ बि 5 करोड़ रखण जी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां बापा जे दलसन जे क़याम लाइ क़ानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसूदे जी तयारी लाइ कामेटी क़ाइम। क़ानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड, कामेटी जो कन्वीनर मुक़रर, अटॉर्नी जनरल, नाणे वारे ममलकती वज़ीर ऐं क़ानूनी माहिर कामेटी में शामिल। कमेटी वापारी अदालत जे क़याम बाबति क़ानूनी मसूदो तयार कंदे। कामेटी वापारी तकरारनि जे निज़ाम जो जाइज़ो वठी सिफ़ारिशूं पेश कंदी। क़ानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट बि तयार कई वेंदी। डील खां सवाइ ॿई रांदि यूरेनियम हासिल करे सघूं था, फ़ौजी कार्रवाई थिए या ॻाल्हियूं। कामयाबी अमरीका जी थींदी, अमरीकी सदर ट्रंप जो व्हाइट हाउस में तकरीब के ख़िताब। संदसि चवण हो त मुआदे तहत ईरान एटमी हथियार नथो रखी सघे। असां ईरानी क़यादत, नेवी ऐं फिज़ाया खे ख़तम करे छॾियो। ईरानी सुप्रीम लीडर सां बि मुलाक़ात नथो करणु चाहियां, पर मुआदो थियण सूरत में मुलाक़ात मुमकिन आहे। लबनान सूरत हाल ते नज़र रखणी पवंदी। यूक्रेनी सदर ऐं रूसी सदर मुलाक़ात कनि त सुठो लॻंदो। भारत सां वापारी मुआदो जल्द थी सघे थो। ईरान सां मुआदे बाबति बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी। ईरान जंग नथो चाहे, जारियत थी त भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची शहवाज, ईरान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। तेहरान कंहिं बि हमले जी सूरत में पंहिंजो दिफ़ा करण सां गॾोगॾु भरपूर जवाब बि ॾींदो। ईरान खिते में तकरारनि जो कॾहिं बि हामी न रहियो।
1: На границе ситуации между небольшая страна и двусторонней связи. Да, конечно, есть и большое значение для Пакистана.
0: नथो सम्झां, पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने सम्झूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा मज़बूत आहिनि।

नौशल फिरोज जी अदालत में पसंद जो पाणो कंदड़ जुड़े जे पेशी वक्त हथियारबंद पहुंची विया। पुलिस अदालत में दाखिल थियण जी कोशिश कंदड़ चयनि जणनि खे सोखो करे वरितो। पसंद पाणो कंदड़ पुलिस अहलकार इमदाद सोलंगी ऐं फौजिया खोखर नौशल फिरोज में दरत में पहुता त हथियारबंद पहुची विया। खोखर ब्रादरी जे समय माण्हुनि जो पेशी वक़्त अदालत खे कड़ो चाढ़े छॾियो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज SSP खे तलब करे वरितो। ज़िले जे समूरी नफ़री खे अदालत पहुचण जो पैगाम।

गुज़िरियल साल घरू वज़ीर जी मौजूदगी में हथियार फिटा कंदड़ वारनि जे 8 महीननि बाद गिरफ़्तारी ज़ाहिर। सिंध हुकूमत जे हथियार फिटो करण वारी पॉलिसी तहत 22 अक्टूबर 2025 ते शिकारपुर पुलिस लाइन में घरू वज़ीर ज़िया लंजार ऐं अॻूणे आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमण साम्हूं धाड़ियल हथियार फिटो कंदड़ वारनि खे सरेंडर पॉलिसी तहत पुलिस जी निगरानी में रखियो वियो हो। शिकारपुर पुलिस वटि सरेंडर थियल धाड़ियलनि ते 4 करोड़ खां वधीक इनाम बि रखियल आहे। ज़रनि मूजिब पुलिस द्वारनि खे ज़ाती जणनि जा ठाह करण मुखबर तौर ॿिनि धाड़ियुनि लाइ छॾियल हो। SSP शिकारपुर धाड़ियुनि जी पेशी बाबति कुझु देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। राधन ग्रिड स्टेशन जे 4 ॾींहं बि बिजली बहाल न थी। राधन थरड़ी मोहबत ऐं नओं ॻोठ शाह पंजो समेत सवे ॻोठ बिजलीअ खां बहिरूम। सख़्त गर्मी सबबि रवासनि जूं तकलीफ़ूं वधी पियूं। मीरपुर माथेलो में बि वकीलनि जो ॻोठ बिजली जे 4 ॾींहनि खां बंदि थियल बिजली जी बहाली लाइ एहतजाज। सखर जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जी बिजली 2 ॾींहनि खां बंदि। कुर्शी ॻोठ, नओं पिंड, पठाण कॉलोनी, माइक्रो कॉलोनी, शर चौक, विजराणी चौक समेत ॿिनि इलाइक़नि में बिजली जी बंदि सबबि पाणी जो बहरान। सिंधड़ी में गरोड़ शाख जी पुछड़ ताईं पाणी न पहुचण ख़िलाफ़ आबादगरनि जो एहतजाज। खिपटो मीरपुर खास रोड ते धरणो हयो वियो। आबादगरनि जे आपासी अमले ते मुंड जे आबादगरनि खे पाणी वेगो करण जो इल्ज़ाम। पाणी चोरी रोकिए गरोड़ शाख जी पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। फैज़गंज जी अदालत में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ पुछड़ी जी आबादगरनि जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी। अदालत ईंदड़ ॿुधणीअ ते चीफ इंजीनियर ऐं एक्सएन खेरपुर खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। SDO ते कावड़ जो इज़हार 3 ॾींहनि में पुछड़ी ताईं पाणी पहुचाए तस्वीरुनि सां गॾु रिपोर्ट पेश करण जो हुकम। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में STPA जा एहतजाज। शहीद मेमण खे बाज़ियाब कराए महांगाई ते ज़ाब्तो आणण जो मुतालबो। कनकोट, चंबड़, भरिया सिटी, ओबाड़ो ऐं ॿियनि शहरनि में STP पारां एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। मुज़ाहिरनि चयो त सिंध में मनचार जो विकिरो जारी आहे। अमन मंत्र हाल बि ख़राब आहे। अमन बहाल करायो वञे।

कनकोटन पर पासे मुरली ते जाप्तो ना आयो उरली वगे वधिक बबार फोत टिन वरन जो इलाज बख्शे चैन वरन जो सों लाशारी उरली वगे फोतिया शहरन जो चवण आए तो उरली इलाके में तेजी से पकड़ी रही है सेहत का नोटिस वटे टीम मोकले सिटार जा अगवा जनल दहें क्लास की शागिर्दियाणी आसपा मुगल बाजियाब न थी सकी नारी की बाजियाबी लाए वारसन सियात समाज धुरन जो एहतजाज मुजाहरीन चो तो आसपा के हुसैनाबाद में ब पेपर वाली के स्कूल वेंदे अगवा कर पुलिस नारी के बाजियाब करण में नाकाम थी वही है बाजियाब कराए वने

खैरपुर में गुजरियल ॾींहुं ज़हर पी आप काज जी कोशिश कंदड़ नौजवान दम ॾेई छॾियो। नौजवान जावेद चांडियो सिविल अस्पताल खैरपुर में इलाज दौरान दम ॾिनो। बाबडा कॉलोनी में नौजवान साल खालदा चांडियो घर अमृत तां ज़हर पी छॾियो हो। नौजवान जी घरवारी गुज़िरियल ॾींहुं फौत थी वई हुई।

0: चुल में पोलियत के सरेआम कतल कंदड़ वडेरे जो पुट बिलावल सरकी कानून का ॾाढो पुलिस चौकीदार अजमल मेमून के कतल केस में नामज़द त वडेरे जे पुट बिलावल सरकी के ब हफ्ता गुजरण बावजूद गिरफ्तार करण में नाकाम केस खे रोअण जो तयारियूं करे छॾियूं। बासर मुबैना तौर ते मक़तूल जे वारसनि ते ठाह लाइ दबाउ विझण लॻो। साहब बेजो अब्दाल शाह खे गोटाला ॾिठो कुंवारो वटां घारो फसल पाणी हेठि आपाशी अमलो न पहुतो गोठाण पारां घारो बंदि करण जूं कोशिशूं जारी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: ईद ते सिर्फ़ चांहि नाहे ठाहींदी, महफ़िलूं सजंदियूं आहिनि। टपाल मेज़बान ईद उल अज़हा जो असली मेज़बान।
3: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
4: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत, और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू, कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
5: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
6: ब्लैक ब्यूटी कलर टैंक, जिसे लगाने के बाद किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं। ब्लैक ब्यूटी

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

वक्त हालतूं आए वाकया मुसलसल तब्दील थी दा रहन था मुस्तकिल हो जाए थी सिर्फ तब्दील हर पल तब्दील थी लड़ वाकयन जा नवा पहलू वसी आए गहरो नुक्ता नजर सिर्फ इनसाइड विद नाजिया मीर था।

0: कराची में बीख खबर है जमायत इस्लामी जो बिजली की बंदिश है पानी कोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो किया वो है। जमायत इस्लामी जो कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस बारा एहतजाजी मुजाहरो किया वो मुतालबो किया वो शहर में बिजली की बंदिश खत्म करे पानी की फरहमी यकीनी बनाई वे। कराची में खबर शेयर की जमायत इस्लामी जो बंदिश बिजली की बंदिश है पानी खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो किया वो। जमायत इस्लामी जो कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस बारा एहतजाजी मुजाहरो किया वो शहर में बिजली की बंदिश खत्म करे पानी की फरहमी यकीनी बनाने जो मुतालबो किया वो है। खबर शेयर कराची में जमायत इस्लामी जो बिजली की बंदिश पानी खोट खिलाफ एहतजाजी मुजाहरो किया वो है। जमायत इस्लामी जो कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस बारा एहतजाजी मुजाहरो किया वो शहर में बिजली की बंदिश खत्म करे पानी की फरहमी यकीनी बनाने जो मुतालबो किया वो है। कराची में खबर इस्लामी जो बिजली की बंदिश मुजाहरो किया वो है। जमायत इस्लामी जो कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस बारा एहतजाजी मुजाहरो किया वो शहर में बिजली की बंदिश खत्म करे पानी की फरहमी यकीनी बनाने जो मुतालबो किया वो। जमायत इस्लामी जो कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस बारा एहतजाजी मुजाहरो किया वो है। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत लाइ आयरलैंड का इंग्लैंड पहुंची पई है। पाकिस्तानी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप में शिरकत लाइ डबलिन का बर्मिंघम नॉटिंघम पहुंती है। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत लाइ आयरलैंड का इंग्लैंड पहुंची पई है। कौमी वुमेन्स टीम पहरी वार्म मैच में श्रीलंका खिलाफ डर्बी में 6 जून ते खेलंदी। वुमेन्स क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप का अगे कौमी टीम की तैयारियों भरपूर अंदाज में जारी हैं। कौमी वुमेन स्काउट में मेगा इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने लाए पुरजम है। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मुजाहिद सोलंगी खान हवाले से अपडेट्स मालूम कदी। मुजाहिद अपडेट कजो इन हवाले से।
1: जी बिल्कुल, पाकिस्तान वुमेन टीम है जी डबलिन आयरलैंड का आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत कराए नॉटिंघम रवानी जिते जो T20 वर्ल्ड है उन्हें पार्टिसिपेट करने लाए पाकिस्तान वुमेन टीम किया है। वह बिर्मिंघम का नॉटिंघम पहुंचंदी उनते कुछ देर आराम करी उन प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करी। पाकिस्तान वुमेन टीम ने किया है इन मेगा इवेंट का वार्म अप मैच किया है। वह श्रीलंका खिल थियल है उन्हें डर्बी में 6 जून से जैखा आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का पेरी भी कौमी वुमेन टीम जे किया है। वह भरपूर प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करी जैसे तो कौमी वुमेन स्क्वाड है इन मेगा इवेंट में बेहतर जो मुजाहरो कर सीरीज का यानी इन आयरलैंड वेस्ट के खिलाफ भी टे मुल्की सीरीज में शिरकत कही पर बरसात सबब वो इवेंट सही तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के न मिल सको वुमेन टीम के हाँ वो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर नॉटिंघम रवाना थी हुई है। जी
0: ठीक है मुझे याद सुनिए।

कुंडली मकबरा ईद रिहाड़े वीगो गाड़ी जे चक्कर में फोतियल पोइत जा वारिस अदालत पहुची विया आहिनि। फोती केवल कुली जा वारिस केस दाखिल करण लाइ सेशन कोर्ट उमरकोट पहुता। अदालत फरियादी धुर ऐं पुलिस जो मौके ॿुधण खां पोइ केस दाख़िल करण जो ज़बानी हुकुम ॾेई छॾियो आहे। कुंडरी मां ख़बर शेयर कयूं पिया। इतरियाड़े वीगो गाड़ी जे चकर में फोतियल पोहर जा वारिस अदालत पहुची विया आहिनि। फोती केवल कुली जा वारिस केस में दाख़िल करण लाइ सेशन कोर्ट उमरकोट पहुता। अदालत फरियादी धुर ऐं पुलिस जो मौको ॿुधण खां पोइ केस दाख़िल करण जो ज़बानी हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालत जे हुकुम खां पोइ ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ कुंडरी थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। कुंडरी पुलिस केस दाख़िल करण खां इनकार कयो हो, जंहिं खां पोइ वारिस अदालत पहुता आहिनि। कुंडरी मां ख़बर शेयर कयूं पिया त ईद ॾियारी वीगो गाड़ी जे चकर में पहुतल पोइ जा वारिस अदालत पहुची विया आहिनि। पहुती केवल कोली जा वारिस केस में वारिस केस दाख़िल कराइण लाइ सेशन कोर्ट उमरकोट पहुता। अदालत फरियादी धुर ऐं पुलिस जो मौको ॿुधण खां पोइ केस दाख़िल करण जो ज़बानी हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत जे हुकुम खां पोइ ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ कुंडरी थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। बुलेटिन में फ़िलहाल एतिरो ई वठंदासीं शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक खां पोइ हाज़िर थींदासीं। ॾिसंदा रहो केटीए न्यूज़।

0: नया लाइफबॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफबॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
1: ईदत सिर्फ चाहे नाहे ठहंदी महफिलों सजंदी हुई टपाल मेजबान ईद उल अजाजो असली मेजबान।
2: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
3: लाफ ब्यूटी कलम टैंक, जिसे लगाने के बाद किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं। लाफ ब्यूटी
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

सिंध में लोहार की किरत समेत फनी या हुनरी एतबार से सदिन खां कई हुनर जेके हिता जा मकामी हुनरमंद मानू पेंजे रोजगार जे लाए तोड़े जे जिंदगी जे समाजी ए मुआशी शोबन में तरक्की वठाण लाए कम करे रहा है। लोहार की कम ते मौकक मोहम्मद अली पल्ली सदिन जे मोहित हुनरन जे पसमंजर में लिखे थो त आसार कदीमा जे माहिरन इन धरती ते जिंदगी जे आसारन ए चुरपुर बाबत मुख्तलिफ किस्मन जा राया गुमान ए सबूत पेश कंदे जिंदगी के केतरन ही दौरन में विरायो आए। संदन तहकीक मूजिब इन धरती ते इंसान लखे सालन खां रहंदो पियो अचे जैंजी रहणी करणी बाबत खोजना कई वही त पहिरे वारे दौर खे नामालूम कोठियो अथन जंहिंखां पोइ जेका तक़सीम कई अथनि तंहिं मूजिब 50,000 क़बले मसीह खां 25,000 क़बले मसीह ताईं वारे दौर खे शिकार वारो दौर चयो अथनि ऐं 25,000 क़बले मसीह खां 10,000

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत जो नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स स्कीम आणण जो ऐलान। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स ॾींदड़ आसानी चाहे थो। स्कीम ज़रिए 30 खां 40 लख दुकानदारनि खे टैक्स जे दायरे में आंदो वेंदो। जेको तबिको टैक्स न ॾींदो हू हाणे ॾियण चाहे थो। ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी चयो आहे त मुशावरत ऐं वापारी तंज़ीमनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालियानी 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़ दुकानदारनि ते लागू थींदी। IMF नए माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वारी रियायत खत्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। तालीमी सामान वधीक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियुनि जो चवण आहे त हुकूमत IMF जे मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाकी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे।

ईरान जंग नथो चाहे जारियत थी त भरपूर जवाब डि॒नो वेंदो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे त तेहरान कंहिं बि हमले जी सूरत में पंहिंजो दिफ़ा करण सां गॾु भरपूर जवाब ॾींदो। ईरान ख़िते में तकरारुनि जो कॾहिं बि हामी नाहे रहियो। नथो सम्झां त पाकिस्तान चीन जे कंट्रोल में आहे। पाकिस्तान ऐं भारत में सरहदी मसलनि खे बि बहितर नमूने सम्झूं था। रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो आहे त पाकिस्तान वॾो मुल्क आहे जंहिंजा मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां मज़बूत ऐं मुस्तहकम लाॻापा आहिनि। रूस ऐं चीन जा लाॻापा बि मज़बूत आहिनि। ईरान ऐं अमरीका विच में जंग बाद पाकिस्तान सफारती किरदार सबबि वाशिंगटन जो अहम इतिहादी थी वियो। अमरीका ईरान जंग दौरान पाकिस्तान अहम सफारतकारी किरदार अदा कयो। अमरीकी मीडिया चयो आहे त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरूआती जंगबंदीअ में अहम किरदार अदा कयो। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल ऐं वज़ीर आज़म जी केतिरा ई भेरा तारीफ़ बि करे चुको आहे। मुस्तक़िल मुआहिदे ते पहुचणु अञा बि वॾो चैलेंज बणियल आहे। पाकिस्तान घुर्बल नतीजा न ॾिना त अमरीकी नाराज़गी ऐं दॿाउ जो शिकार थी सघे थो। पाकिस्तान आलमी सतह ते किरदार अदा करण लाइ पुरअज़म आहे। दुनिया खे महफ़ूज़ करण लाइ सरहदनि जी सिक्योरिटी लाइ बि कदम खणण ज़रूरी आहिनि। बिश्केक में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी घरेलू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो त बॉर्डर सिक्योरिटी लाइ SCO जो प्लेटफॉर्म अहम आहे। पुरअमन दुनिया तरफ़ वधणो आहे जंहिं लाइ गॾियल कोशिशूं करणियूं पवंदियूं। घरेलू वज़ीर बिश्केक में ईरानी हमन सभ सां बि ॿीहर मुलाक़ात कई। ॿिन्ही घरेलू वज़ीरनि तकरार जे ख़ात्मे लाइ सफ़ारती कोशिशूं जारी रखण ते बि ज़ोर भरियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331252586।
4: जी हाँ, बुड़ी 331 5786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: कि हम अपने जानवरों को खुला छोड़ दें, अपनी बकरियों को, गायों को और बहुत सारे लोगों को जो है ना उनको नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ दें, तो ये कहां की शराफत है जनाब? इसमें तो हमारा किरदार नहीं हुआ ना। तो अगर हमने माहौल को बहुत अच्छा करना है, इस कयामत खेज गर्मी को कम करना है, बारिशें लानी है, हवाएं लानी है, माहौल को सरसब्ज करना है, अपनी सेहत अच्छी करनी है, बच्चों की सेहत अच्छी करनी है, अपनी नस्लों, आने वाली नस्लों की सेहत पर अच्छे असर मरतब करने हैं माहौल के, तो हमें माहौल को साफ सुथरा रखना होगा, हमें माहौल को ग्रीन रखना होगा। तो बिल्कुल जनाब, माहौलियात का आलमी दिन है, तो आज से हम ये ऐद करते हैं कि जनाब अपने माहौल को बहुत अच्छा, साफ सुथरा, खूबसूरत रखेंगे और ऐसी सरगर्मियां जरूर जनाब करेंगे माशरे में जिसके थ्रू हम लोग माहौल को बहुत साफ सुथरा रखें और खूबसूरत रखें, ग्रीन रखें, ताकि माहौल हमारा सरसब्ज हो, बहुत बेहतरीन हो और इससे जनाब हमारी सबकी सेहत पर जो है पॉजिटिव असरात मुरतब हो। आपका अपना शफाक आपके साथ, हमारे फेसबुक आईडी के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं अल्लाह बख्श चाकरानी, क्लैपिंग करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अब्बासी, हमें इस वक्त देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत सारे हार्ट्स मिल रहे हैं। तो आप हमारी आईडी फेसबुक आईडी है जनाब अशफाक अनियाजी, उसको फॉलो कीजिए और हमारे साथ आ जाइए। अल्लाह बख्श चाकरानी कहते हैं लव दिस जनाब, बिल्कुल जनाब, हमें भी आपसे बहुत प्यार है, आपको भी हमसे बहुत प्यार है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं जनाब, हमारा नंबर हम आपके गोश गुजार कर लें, 03000113488 हमारा नंबर है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके अपनी डेडिकेशंस भी दे सकते हैं। इम्तियाज अली लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनाब आप लोग हमारा वेट कर रहे हैं तो हम भी आपकी कॉल्स देने के लिए बिल्कुल बेताब हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से कह दें कि आज माहौलियात का आलमी दिन यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ आगाही वॉक्स होती हैं, मुख्तलिफ जनाब जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो मुनक्किद किए जाते हैं ताकि तमाम लोगों को ये अवेयर किया जाए कि माहौल को सरसब्ज, खूबसूरत और सेहतमंद बनाने के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं, क्या क्या नई सोच हमें दरकार है और किस किस्म की जनाब हमें स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि हमारा मुल्क, हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला और हमारी दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तो जनाब दुनिया को, मुल्क को, मोहल्ले को, इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। तो अपना अपना किरदार अदा करते रहिए, अशफाक नियाज़ी के साथ रहिए, GFM88 नेटवर्क पर हम सभी साथ साथ हैं और मेरी आईडी पे हम लाइव भी हैं जनाब, आप हमें लाइव मेरी आईडी के नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं, GFM88 ट्यून कर सकते हैं ताकि आप जनाब हमसे बहुत सारी मालूमात लेते रहें और हम आपके साथ की बदौलत आपका प्यार बहुत ज्यादा पाते रहें, क्योंकि हमें आपका साथ और हमें आपका प्यार बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए, इतना सारा प्यार आपका चाहिए ताकि आप हमें भूल ना पाए और हम आपको भूल ना पाए। तो जनाब आप हमारा नंबर एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए, 03000113488 और यूं आपका हमारा साथ 7 बजे तक रहेगा। इम्तियाज अली आईबी लाशारी कहते हैं अशफाक भाई कैसे हो, सागर कैसा है? सागर बहुत अच्छा है, सागर बहुत तैयबा ने माशाल्लाह, और सागर का माशाल्लाह तीसरा बेटा हुआ है जनाब, उसको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, और आप सबकी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी उसको बहुत बहुत मुबारक हो। देन मैं भी बहुत ठीक हूँ, आप मुझे देख ही रहे हैं लाइव। इरफान सदीकी इज वाचिंग, इरफान सदीकी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे से भाई इरफान भाई, आप कैसे हैं? हम लेते हैं शो की एक और कॉल, यानी कि शो की पहली कॉल और देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: के रदा सा सबनी सा गड
1: प्रकाश का हम
0: सॉरी अदा तां जी आवाज डिस्टर्ब थे थी तां जनालो चाहे
1: मोहम्मद
0: अली जरवार अच्छा मोहम्मद अली भा केड़ा हाल चाल तब
1: मोहम्मद अली जरार
0: मोहम्मद अली जरा
1: मोहम्मद अली जरा
0: अच्छा ओके मोहम्मद अली तनालो अथव ना
1: मोहम्मद
0: अजीज
1: जी जी
0: ओके ओके सॉरी यार मुखे अलाए वहां पोड़ो थी वाला साहब कुराड़ो थी वहां चाल मुखे आवाज ने पे अच्छी एनीवे मोहम्मद अजीज भा केड़ा हाल चाल तब
1: केड़ा मैं बुदायो
0: ठीक ठाक अजीज भाई खुश आयो सफा मजे में तांज के असो प्रोग्राम के लगन दो आ
1: प्रोग्राम सिको लगन दो इंतजार
0: करना अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह यो बतायो तो तमाम माहौल के साफ आई सुथरो करण लाए आई जबरदस्त करण लाए पांजे इलाके में वण जकाए पोख्यान
1: जी जी अगर वण
0: आ माशाल्लाह तोने जी हिफाजत विफाजत कंदा आयो या बस ये छरे देना तब गुड छोटा अगर असा वणन जी हिफाजत कंदासे त असन जो माहौल थदो थिंदो खूबसूरत थिंदो
1: जी जी
0: अच्छा अजीज भाई यो बतायो गानो केडो बुधन चाहो था
1: असन जे फौजिया सुमरो
0: फौजिया सुमरो जो केडो कहिड़ो गानो फौजी आहे सूमर जो? जेको ई ॿुधायां, अच्छा जिते ॾियारिया हुया पखी। ओके, कंहिंजे नाले था करण चाहियो? ओके ओके, मुंहिंजा भाउ प्यारा भाउ, थैंक यू सो मच। पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अज़ीज़ भाउ, तव्हां असांखे कॉल कई आहे, मूंखे तव्हांजी आवाज़ जेका आहे प्रॉपर नथी अचे, हिन लाइ मां हेडफोन थो आणा त जीअं मूंखे तव्हांजी आवाज़ प्रॉपर तरीक़े सां अची वञे। और जनाब हम लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सैयद मदद।
0: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद, कहिड़ा हाल चाल आहिनि? केरु असां सभिनी सां गॾु?
2: साईं तव्हां सभिनी सां गॾु शहर सरदार खां साईं ॻाल्हायां थो।
0: ज़ाहिद शाह भाउ, कहिड़ा हाल चाल आहिनि ऐं तव्हांजे ॻोठ जो कहिड़ा हाल आहिनि? तव्हांजा ॻोठ वारा सभु कीअं
2: आहिनि? असांजो ॻोठु तमामु प्यारो लिलो ॻोठु आहे, सभिनी तमामु ख़ुशहाल ॻोठु आहे, अलहमदुला। ॾाढे शुक्र आहे तव्हांखे, वणकारी वणकारी सरकारी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, तव्हांजो माना ॻोठ सफ़ा साओ लॻो पियो आहे।
2: तमामु सही, बसि सौ सौ झुगड़ो आहे, मुंहिंजे मुल्क में तमामु प्यारो आहे, बसि अलहमदुला।
0: जबरदस्त जबरदस्त, छो त माहौल खे असां ई साफ़ सुथरो करणो आहे न, अगरि असां माहौल में माहौल खे साफ़ सुथरो करण में पंहिंजो किरदार अदा न कंदासीं त पोइ इहो सुठी ॻाल्हि न आहे। त हमेशा तव्हां पंहिंजे ॻोठ खे, पंहिंजे इलाइक़े खे साफ़ सुथरो ऐं ख़ूबसूरत रखो त जीअं तव्हांजी तारीफ़ थिए।
2: हा सी बिल्कुलु, असांजी परिभाषा त असां हर वेले हर घड़ी चार भले रोड जी समय सुठी करे न सही।
0: जबरदस्त जबरदस्त, गुड गुड गुड। अच्छा भाऊ, ये ॿुधायो त मां फौजिया सूमर जो गानो थो प्ले कयां, कंहिंजे लाइ था करणु चाहियो? जी जी,
2: दोस्ती पंहिंजे नज़ीर भाई
0: सही सही,
2: ऐं पोपट पिता थिया, मोर पिता थिया
0: जी जी,
2: अब्दुला भगवान साईं माता बली शाह
0: सही,
2: अकबर खान पंजरो ऐं पंजाबल खान दादा मोर्की ज़िले में सही।
0: अच्छा गुड,
2: ऐं जेका बि
0: वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा प्यारा भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जनाब, हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर और अब हमारे साथ फेसबुक के थ्रू हैं फकीर मोहम्मद यूनुस जतोई, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रिंस महर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे से, हैंडसम से, खूबसूरत से, टैलेंटेड से दोस्त। और प्रिंस भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं। और इरफान भाई कहते हैं अशफाक भाई, जी जी भाई। और फकीर मोहम्मद यूनुस कहते हैं मोहब्बत मोहब्बत करते हैं लोग, मोहब्बत की कदर नहीं जानते, हम चिल्लाकर कहते हैं बेवफा है जमाना, मगर कुछ लोग मानते ही नहीं है। क्या बात है मोहम्मद यूनुस जतोई साहब, आप खुद समझ जाएं कि जमाना बेवफा है, किसी को बताने की जरूरत ही क्या है। और बरकत खोसा हमारे साथ हैं जैको आबाद से, बरकत अली खोसा साहब थैंक यू सो मच। खिजर हयात बानी हमारे साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमें देख रहे हैं, पता नहीं किस कंट्री से, आई थिंक सऊदीया से हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच खिजर हयात बानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रिंस महर साहब कहते हैं अशफाक खान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच मेरा प्रिंस भाई जिंदाबाद। और जनाब कहते हैं हमेशा जीते रहो मुस्कुराते रहो, डियर सेम टू यू मेरे प्यारे से भाई प्रिंस मार भाई, आप भी हमेशा जीते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियों में खेलते रहें। रशीद हुसैन हमारे साथ हैं इसके साथ, और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, राशिद हुसैन हमारे साथ हैं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, अरे बाबा कॉल ही कट जी भाई, वट ऑन द शो जी बी कॉल। अस्सलाम वालेकुम, जी अदा खेर असां सभिनी सां गॾु कुलबान फुलपोटो साहब शहीद शहर खां,
3: ठेड़ी शहर का,
0: अच्छा ठेड़ी शहर का, ओके ओके। कुर्बान साहब कहिड़ा हाल चाल अथव? माशाला छा कंदा आहियो दा कुर्बान? अच्छा त कीअं हले थो तव्हांजो कमकार? अच्छा गुड आहे गुड आहे यार, तव्हांखे असांजो प्रोग्राम कीअं लॻंदो आहे, भला गर्मा गर्मी कीअं हले थी तव्हांजे ॻोठ में?
3: शुक्र आहे असांजे अञा गर्मा गर्मी घटि आहे, छो त असांजो बहराड़ी इलाइक़ो आहे।
0: अच्छा माशाला, बहराड़ी में एतिरी न हूंदी आहे गर्मी भला?
3: न साईं, थोरो हवा वहा लॻे थी न, छो त वरी शहर में घणी हूंदी आहे, जॻहि जॻहि मां जॻहि जॻहि।
0: हा एक्ज़ेक्टली सही थो चओ, पर अॼु हिते बि थोरो घणो अमन आहे, पर हवा बि हले थी ऐं थोरो आसमान ते गर्द आलूद मतिलब गर्द आलूद बि आहे हिन लाइ। अच्छा कुर्बान भाउ, फौज जा सूमर जो गानो थो हलायां, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
3: साईं इहो तव्हांजे नाले,
0: जी जी,
3: जेकी संगत ॿुधे थी सभिनी खे,
0: जेकी संगत ॿुधे थी सभिनी जे नाले, ठीक आ रात ठीक आ महरबानी ता पांजो खास ख्याल रखो कुर्बान भा हमेशा खिलंदा मुस्कुरांदा रहो आई ई असा के दिसंदा रहो आई बुधंदा रहो जी जनाब वठो ता शो जी एकड़ी भी कॉल चाहू ता पांजे कॉलर के अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जनाब मुख्य आवाज तो नहीं अचे पर हाँ छा क्या हाँ वो शो जी बी कॉल मुझे लाइव भी थोड़ी डिस्टर्ब थी हुई है पर कोई गाल है अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम
0: केर दा सा सबनी सा गड
4: अशवाक बा सवार मोहम्मद सचर चंबाणी नारो आर्टिस्ट
0: सा सवार भा केड़ा हाल चाल है ठीक ठाक है हो
4: वाह अल्हम्दुलिल्लाह काल हटे न के को ना ओके के को ना हेलो दा के
0: मुखे वड़ी तकड़ आना मा चवा तो जी ता जी कॉल ना ड्रॉप थी उने बेओ ठीक ठाक सवार भा
4: बेओ खैर दो आप
0: सफा मजे में अल्हम्दुलिल्लाह कम कार की तोले ता जो
4: इतर अल्हम्दुलिल्लाह सही पियोले
0: सफा सही पियोले
4: मालिक जलक
0: काम करे यो बुधायो नारे ते गर्मी केतरी आ
4: गर्मी की आ इलाही
0: अच्छा इलाही गर्मी आ
4: हां गर्मी इलाही आ ओके वाइट को मन मावला पराडी मावला
0: जी जी जी जी सही सही
4: यो बेटू ने करे गरम हो
0: हां एग्जैक्टली यो बुधायो ता फौजी सुमरो जो गानो केन जे नाले ते करना चाहो
4: हां लंबा साहब का काम जो अली मोहन बबरो मांग में मिल
0: अजीज
4: मंगरो साहब
0: जी जी राशिद हुसैन कहते हैं लव यू जाना थैंक यू सो मच प्रिंस महर कहते हैं अशफाक भाई आज आप हमें कोई भी सॉन्ग डेडिकेट करें अपनी पसंद का ओके मेरे प्रिंस प्यारे से भाई जरूर मोहम्मद फकीर यूनिस जतोई कहते हैं आओ चले वहां जहां मोहब्बत की सल्तनत हो यहां महफिलें तो सजी हैं मगर उन महफिल में कोई राहत नहीं होती है बाय जमाना क्या बात है फकीर मोहम्मद यूनिस साहब इरफान मंगी इज वॉचिंग जावेद अफजल इज वॉचिंग जावेद अफजल तैयबी और लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम कॉल अटेंड करते ही ड्रॉप हो गई पर कोई बात नहीं है जनाब हम लेते हैं शो की एक और कॉल रैंडम कॉल अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम साईं पेरन दे त किबला साहब
0: साईं दिल्लीन में जाय ता जी नालो छा बुधायो ता पांजो
5: बस दादा सुनियो अमीर बख्श मंगणार जिलो गोपी मिश्री गोठ मां
0: अमीर बख्श मंगणार प्यारा भा असा सबनी सा गड आइन मिश्री गोठ का मिश्री जेड़ा भा केड़ा हाल चाल तव
5: सब खैर आला जा सान जो खैर खुशा तव जी टीम ठीक आ
0: फर्स्ट क्लास सब मजन में आइन तमा भारे जी दुआओं सा सबनी सा गड आनी यो बुधायो त कमकार ता जो के थले
5: अला जो शुक्राने भेजे के पानी दिनो पियो मां जो काल भाजी मिलाऊ कोई कम मिले भी टाइम मिले भी कोन
0: हां वाकई वाकई सुठो कियो त हाने कॉल मिलाई है वरी लाइन इलाही बिजी थी विंदी आप
5: हाँ
0: बेहो खैर अलहमदुल्ला मुझा प्यारा भाई बुधायो फौजिया सुमरो तो हलाया कैसे नाले था करना चाहो
5: दोस्त शाम लगे गुलाब जब जिसकानी प्रोग्राम करे तो वो जुमे जड़ी कालू वे तो मजो वो यारे का एक ती हले तो गुलबार
0: अच्छा कड़े स्टेशन तुम हले तो सखर का हले तो
5: मोरो
0: तुम हले तो क्योंकि उनके असा जरूर तुझो पैगाम पहुंचाए अच्छा सही सही सही बस मां जिसकानी साहब तक तुझो पैगाम पहुंचाए छिया तो
5: हाँ दोस्त आला दादा मार मोहम्मद इमार पठान खान पटकेर याद शाकन जो प्रोग्राम होते थे
0: जी जी
5: ओके
0: मुझे प्यारा बात थैंक यू सो मच हमारे साथ बहुत प्यारे से भाई मिश्री गोड से कुर्बान भाई दे आए थे तो लेते हैं जनाब अब एक अदर सॉन्ग ब्रेक आप हमारे साथ रहिएगा और जनाब ये सॉन्ग डेडिकेट करते हैं हम प्रिंस मार भाई को फौजिया सुमरो का बहुत प्यारा सा गाना है जनाब और इस गाने को आप सुनिएगा सुनते रहिएगा GFM 88 नेटवर्क से आपका अपना शो है जनाब आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी

0: شاه لطيف كاست.
1: सिंकी हो तो आवाज भी सिंकी है GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ग्रीनरी आहे, त तव्हां हुनखे वधायो, अञा हिनखे घटि न करण ॾियो। अगरि कोई बि माण्हू वण माना वढे थो त हुनखे रोकियो, तव्हांजे जेका इलाइक़े में कोई माण्हू वण वढे त कोन थो न? माशाल्लाह जबरदस्त आहे, जबरदस्त आहे यार, 100 वण लॻल आहे त भली ॻाल्हि आहे, इन्हनि खे बि अञा वधायो त जीअं जबरदस्त ग्रीनरी थी वञे।
1: हा
0: बिल्कुल। हा माशूक भाई, गानो कहिड़ो ॿुधण चाहियो था अॼु?
1: गानो सर शमन हिरानी जो।
0: कहिड़ो कहिड़ो?
1: दिलदार,
0: क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ऐं डेडिकेट कंहिंखे करणु चाहियो था?
1: डेडिकेट राजा खान नंदन।
0: राजा खान, वाह वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच माशूक को साहब। आपां जो खास
1: साजिद मेतलो, इरफान चमरो,
0: जी जी,
1: सभिनी जे नाले
0: वठो। ओके जनाब, तव्हां सभिनी दोस्तनि खे असांजा सलाम, थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। ओके ओके सर, ओके ओके ओके ओके ओके। जी जनाब, हमारे साथ थे माशूक खोसो भाई, और माशूक खोसो के भाई बाद हम जनाब जरूर इनका गाना प्ले करेंगे, लेकिन शो की एक और कॉल भी तो ले लेना जनाब। अस्सलाम वालेकुम। लगता है जनाब फिर कोई जनाब जो है कॉल्स पर कोई उहा माण्हू जो डाइण अची वेठी आहे कॉल जे सिग्नल से, त खैर कोई ॻाल्हि नाहे, असां हिन डाइण खे भॼायूं था। जेसी ताईं तव्हां असां सभिनी सां गॾु रहो, असांखे कॉल कयो जनाब, 03000113488 असांजो नंबर आहे। ऐं जनाब असां सां गॾु रहो शाम जे 7 बजे ताईं, छो त असां तव्हां सां गॾु ऐं तव्हां असां सां गॾु हूंदा आहियो त तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे, छो त अॼु फ्राइडे जी मोकल बि आहे, ऐं उहे बि जनाब जॾहिं मोकल हूंदी आहे त घर खां माण्हू ॿाहिरि निकिरंदो आहे, दोस्तनि सां गॾु चांहि शांहि पीअंदो आहे, दाफ़्तो शाफ़्तो खाईंदो आहे, ऐं उहो बि हाणे उज़े वारी ईद गुज़री आहे त दोस्तनि खे बि घुरायो, दावतूं कयो, कोई कबाब शबाब पकाए पचाए खणी अचो, कोई बिरयानी खणी अचे, माना जीअं गैदरिंग थी वञे त मज़ो अची वेंदो आहे। है जनाब 5:43 टाइम इज़ राइट नाओ, ॿाहिरि हवा बि हले थी ऐं थोरो घणो मौसम सुठो बि आहे, पर हर कोई माण्हू चाहे थो त सुठा सुठा जेका आहिनि बादल अची वञनि ऐं बारिश बि थी वञे त ज़बरदस्त ॻाल्हि थी वञे, इहा सुठी ॻाल्हि आहे जनाब। असां वठूं था हाणे शो जी हिकिड़ी ॿी कॉल ऐं चाहूं था पंहिंजे कॉलर खे जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
2: साईं वालेकुम सलाम।
0: केरु था असां सभिनी सां गॾु?
2: ओड़े
0: पाड़े वारा तव्हांखे वफ़ा चवंदा आहिनि?
2: वफ़ा बि चवंदा आहिनि, कॾहिं वहीद बि चवंदा आहिनि, कॾहिं शहीद बि चवंदा आहिनि।
0: अलाह अकबर, शहीद छो भला, तव्हां त जीअर आहियो
2: ओ नाले जी नोए त तर्ज ते हलंदा आहिनि मिड़े।
0: अच्छा, मां ज्वाला केर करे जीअंदा जागदा आहियो, तव्हांखे शहीद छो चवनि भला?
2: साईं सच पुछो त तव्हांजो शो बहितरीन हली चली रहियो
0: आहे, थैंक यू सो मच,
2: टिम कयूं ॿुधूं था तव्हांजो शो,
0: थैंक यू।
2: पर हे जेको भाचो आहे माशूक नालो हो न खोसे जो?
0: हा हा, माशूक खोसो भाई,
2: हिन जे त साईं वरी शायरी रिकाटे तोड़े
0: जबरदस्त शायर आहे, ऐं माना गाननि लाइ बि आई थिंक शायरी चवंदो आहे भाउ।
2: जी जी, जबरदस्त यार, इहो जे ॿुधे थो त मां बि चवंदोमांस, कॾहिं जे ताल लॻेव त मुंहिंजी बि शायरी मुंहिंजे नाले छॾियो बाबा।
0: सही सही सही, माशूक भाई तव्हांजो पैसे ज़रूरु ॿुधंदो। इहो ॿुधायो
2: साईं, हलूं था असां गर्मीअ जे हिसाब सां ऐं वणकारे जे हिसाब सां।
0: हा बिल्कुल,
2: त असां बिल्कुल सिंधू दरिया जे किनारे ते असांजो ॻोठ आहे, माना कच्छ जो इलाइक़ो आहे।
0: अच्छा, गुड आहे।
2: कुरेशी ॻोठ खां उत्तर तरफ़ ते बंद खां हेठि लहो त अलफ़क चवंदो आहे, अलफ़क जे खां बाद में हल फिटल हिकिड़ो दरिया जो गस आहे, उन खां मथां वारा केतिरी छॾियो।
0: सही,
2: हाणे तकरीबनि वीह पंजवीह साल में पोइंटा वञूं त असां वटि वॾी वणकार हुई।
0: अच्छा,
2: बबरो कंडी ही
0: हो,
2: ॿिया खोड़ सातरा वण हुया, पोइ आहिस्ते आहिस्ते जेके पठाण आया जा अहिड़ी ॿियूं मुख़्तलिफ़ क़ौम आहियूं त वण कटिजी विया।
0: अच्छा, माना हुननि रहण लाइ, रहण लाइ पंहिंजा घर ठाहिण लाइ माना हुते वण कटी छॾिया, माना जेका बि
2: बिल्कुलु वण कटिजी विया। हाणे मुसलसल जेको आहे त बबरु वॾो थधो आहे, सिंधी बबरु आहे न?
0: जी जी,
2: उहो थधो आहे हाणे, उहो न आहे त असां वटि कुझु गर्मी जी शिदत आहे।
0: चलो कोई ॻाल्हि नाहे, तव्हां बि हाणे वण जेको आहे उहा पोखियो ऐं पौधा पोखियो त जीअं तव्हांजे हुते गर्मी घटि थी वञे, माहौल सुठो थी वञे।
2: जेको रोड जे किनारनि ते हिकिड़ा वण हूंदा आहिनि, इन जो नालो छा आहे, जेके हीअं कतार ॻंढियल हूंदा
0: आहिनि, इहा सफ़ेदा हूंदा आहिनि, हिनखे हाणे सिंधी
2: में छा चवंदा आहिनि, इहो असां आला अख़्तरनि खे, असां
0: इहे जेका तमामु घणो फ्लेक्सिबल हूंदो आहे, जॾहिं हवा ईंदी आहे त सफ़ा ज़मीन हेठि अची वेंदा आहिनि।
2: इनशाला
0: इनशाला जरूर जरूर वहीद भाई यो बुधायो गानो प्ले क्या तो शमन जो कैंजे नाला करना चाहो
2: साईं गानू ऐं ले सघां आनू हले सघां आनू रूह जेके जा लाइ गानू लाज़मी आहे।
0: वाह वाह वाह वाह ज़बरदस्त।
2: बाक़ी त असांखे तव्हां शमन चयो नी?
0: जी जी
2: शमन, पर नगमो अहिड़ो ॿुधाइजो त मुंहिंजो हिकिड़ो ई यार आहे, ॿियो यार न कबो शमन जो।
0: हा मां बिल्कुलु फ़िलहाल तो इहा प्ले कयां थो, तूं हिकिड़ी आहे मयार माशू कोसो भाई जी फरमाइश ते।
2: सही आहे सही आहे, कोई मसइलो न आहे। इहो असांखे ॿुधायो, कुझु मुंहिंजा भाउर बि आहिनि, कुझु मां सां दोस्त बि आहिनि।
0: जी जी।
2: अॻु में त भाउ इश्ताक नागी,
0: थैंक यू,
2: जेको शो करे रहियो आहे इहो नगमो हुन जे नाले ते।
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: मुंहिंजो भाणी जा रथी कुझु गोली मार में वेठो आहे।
0: सही।
2: तंहिं खां बाद में मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर, मुंहिंजो भाटियो आया त तार लुंड ॿुधंदो अथव सेठारजन खां।
0: अच्छा, गुड।
2: तार लुंड खे बि खोड़ सर सलाम, तव्हांजो शो ॿुधे थो। बाक़ी जेके आल ताल ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वहीद जते पारां सॼे सथ खे सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ब्रेक जो टाइम बि थियण वारो आहे त मां हलां थो ब्रेक जे टाइम ते, ऐं पोइ हुन जे बाद गानो तव्हां इंजॉय कंदो शमल अली मिराली जी वॉइस में।
3: मीरपुर खास।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीफ का अलबीफ करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: जी जनाब घट मिलंदो आ मुखे यार या तो सा आहे मुजी मयार बिल्कुल जनाब असा चाहियो था असा ता सा मिलंदा रहूं इन लाए जनाब वापस मोटी आया हूं ता सा घर ता जी शो आई लव यू ऑल में वठो ता शो दी नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब अगर मुखे ता जी आवाज ना आई ता कोई कॉल ड्रॉप थी विंदी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब ता जी आवाज छू न थी हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर लेते हैं शो की एक और कॉल और जनाब कॉलर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है कौन है कहां से हैं जनाब हाफिज साहब
1: जी
0: हाफिज साहब कहां से कॉल किया है हाफिज साहब मोरो से क्या बात है जनाब मोरो वाले जिंदाबाद मोरो में गर्मी का हाल चाल दें हाफिज साहब कैसी है गर्मी
1: भाई गर्मी बहुत
0: है हाय मर गए
1: मोरो में आपका प्रोग्राम चल रहा है
0: नहीं
1: प्रोग्राम कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे
0: मेरा मोरो वालों को क्या हो गया मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं कनेक्ट करते यार क्या हो गया मोरो वालों मैं अभी इनके कान खींचता हूँ
1: यार वो प्रोग्राम
0: चले जनाब मैं बिल्कुल अभी शिकायत करता हूँ इन लोगों की ये नहीं सुधरने वाले मैं अभी करता हूँ कॉल मोरो वालों को खिंचवाता हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं ऑन एयर करते वहाँ से
1: आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है आप बिल्कुल सुनते हैं
0: हमको लगन लगा की हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम दिल से सुनते हैं आप हमें इतना प्यार करते हैं हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं बस अब अभी चलवाते हैं जी जी केड़ो वाह वाह कें जो आप बाबा यो गानो अच्छा मुमताज मलाई जो जी जी सही
1: लेकिन मोरो
0: हाजिर हाजिर मैं अभी अभी अभी बोलता हूँ अभी बोलता हूँ थैंक यू सो मच हाफिज साहब जी जनाब हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद थे और कहते हैं कि मोरो कनेक्ट नहीं हुआ तो जनाब मोरो वालों कहाँ चले गए हो यार मोरो तो कनेक्ट करो ना यारा और हमारे जो जितने भी दोस्त हैं बेचारे वो सब कह रहे हैं कि मोरो कनेक्ट नहीं है तो ये तो नाइंसाफी है ना मेरे साथ खैर एनीवे आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ रहकर हमारी इस ट्रांसमिशन को एंजॉय कीजिए खैर जनाब अब मोरो वाले भाई की फरमाइश पर मैं गाना प्ले करने लगा हूं आई थिंक जनाब फिर सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्यों ना गाना प्ले कर दूं और एक कॉल लेके फिर गाना प्ले करते हैं अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यारा भाई केड़ा हाल चाल है ना अलहमदुल्ला मुझे जिंदगी सफा तुम भारे की दुआओं से गड सुठी गुजरे थी यो बुझायो त मां जो है मुमताज मलाई प्ले कर चुको है इंतजार आ मौत बराबर कें नाल से करना चाहो जलाल भी बुझाए अल भेणा पक्की परदेसी हाजुर हाजुर बुधायो थैंक्यू थैंक्यू मैं प्ले कर चुको बुधो जी जना पखी परदेसी आई जो मुमताज मलाई जो गानो हो आफ्टर द ब्रेक प्ले कदे जी मोरू में प्ले थी ठीक है यो बुधो खोड़ सार एंजॉय कर

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: टैक्स स्कीम आने रहा आयूं, स्कीम सालानी 20 करोड़ का घट सेल रखंदड़ दुकानदारन ते लागू थींदी। IMF ने माली साल की बजट में स्टेशनरी सेल्स टैक्स वाली रियायत खत्म करने जो मुतालबो कर छोड़ो। तालीमी सामान महंगो थे इम्कान जरियन मूजिब हुकूमत IMF के मुतालबे से स्टेशनरी सेल्स टैक्स लगने जो फैसलो किया है। पहली जुलाई का स्टेशनरी 18 सैकड़ो टैक्स लगने जो इम्कान है। वफाकी हुकूमत नए माली साल की बजट 10 जून से पेश करने जो फैसलो किया है।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तपोए जीए FM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीए FM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाण लाए
2: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252586
2: जी हाँ बुड़ी 331 5 7 86
1: जीए FM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आईएमएफ नए माली साल के बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वाली रियायत खत्म कर जो मुतालबो करे छो। तालीमी सामान वधिक महांगो थियण जो इम्कान। जरियन जो चवण है हुकूमत आईएमएफ के मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लगाने जो फैसलो कयो है। पहली जुलाई का स्टेशनरी ते 18% टैक्स लगने जो इम्कान है। वफाकी हुकूमत नए माली साल की बजट 10 जून ते पेश करने जो फैसलो कयो। वफाकी हुकूमत जो कराची शहर के मुख्तलिफ मनसूबों लाइ फंड जारी रखने जो फैसलो। कराची के समूरन घिटिन पानी के मनसूबों लाइ भी पैसा रखा वेंदा। वफाकी बजट के दस्तावेजन मूजिब कराची के ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1.98 करोड़ रखने की तजवीज। जिले ओलह के मनसूबों लाइ 26 करोड़। नाजमाबाद लियाकताबाद के मनसूबों लाइ 37 करोड़ रखने की तजवीज शामिल। लांडी जमान टाउन कोरंगी टाउन के मनसूबों लाइ 35 करोड़ रूपया रखा वेंदा। कोरंगी ए मलीर जिले के मनसूबों लाइ 5 करोड़ रखने वाली तजवीज भी बजट में शामिल। कराची में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के क्याम लाइ 40 करोड़ रखने की तजवीज। नेशनल रिसर्चर एंड फिजिबिलिटी केयर लाइ 39 करोड़ रूपया रखने की तजवीज। कराची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग के क्याम लाइ 5 करोड़ रूपया रखने की तजवीज दिनी वही।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो जीए एफएम 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दुआई।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत जो नंढनि दुकानदारनि लाइ फिक्स टैक्स स्कीम आणण जो ऐलान। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त टैक्स ॾींदड़ थो स्कीम ज़रिए 30-40 लख दुकानदारनि खे टैक्स जे दायरे में आंदो वेंदो। जेको तबिको टैक्स न ॾींदो हो हाणे ॾियण चाहे थो। ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानी चयो त मुशावरत ऐं वापारी तनज़ीमनि जे मुतालबे ते टैक्स स्कीम आणे रहिया आहियूं। स्कीम सालियानी 20 करोड़ खां घटि सेल रखंदड़ दुकानदारनि ते लागू थींदी। IMF नए माली साल जी बजट में स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स वारी रियायत खत्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। तालीमी सामान वधीक महांगो थियण जो इम्कान। ज़रियनि जो चवण आहे त हुकूमत IMF जी मुतालबे ते स्टेशनरी ते सेल्स टैक्स लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। 1 जुलाई खां स्टेशनरी ते 18% टैक्स लॻण जो इम्कान आहे। वफ़ाकी हुकूमत नए माली साल जी बजट 10 जून ते पेश करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। वफ़ाकी हुकूमत जो कराची शहर जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि लाइ फंड जारी करण जो फ़ैसिलो। कराची जे समूरनि घरनि ऐं पाणी जे मनसूबनि लाइ बि पैसा रखिया वेंदा। वफ़ाकी बजट जी दस्तावेज़नि मूजिबि कराची जे ग्रीन लाइन बस सर्विस लाइ 1.98 अरब रखण जी तजवीज़। ज़िले ओलह जी मनसूबनि लाइ 26 करोड़, नाज़िमाबाद ऐं लियाकताबाद जे मनसूबनि लाइ 37 करोड़ रखण जी औरंगी ऐं मलीर ज़िले जी मनसूबनि लाइ 5 करोड़ रखण वारी तजवीज़ बि बजट में शामिल। कराचीअ में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर जी क़याम लाइ बि 40 करोड़ रखण जी तजवीज़। नेशनल रिसर्चर एंड फिज़िबिलिटी केयर लाइ बि 39 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। कराचीअ में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग जी क़याम लाइ बि 5 करोड़ रुपया रखण जी तजवीज़। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ वापारी अदालतुनि जी क़याम लाइ कानून साज़ी जो फ़ैसिलो करे वरितो। मसवदे जी तयारी लाइ अटॉर्नी जनरल, नाणे वारो, मुल्कती वज़ीर ऐं कानूनी माहिर कमेटीअ में शामिल। कमेटी वापारी अदालत जी क़याम बाबति कानूनी मसवदो तयार कंदी। कमेटी वापारी तकरारुनि जी निज़ाम जो जाइज़ो वठी सिफ़ारिशूं पेश कंदी। कानूनी नुक़्तनि ते तफ़सीली रिपोर्ट बि तयार कई वेंदी।
2: तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाए।
3: दरमियान में खड़ा होकर ये अपील करता हूँ, ये जिद्दोजहद गिलगित के अवाम का जिद्दोजहद है। इसका फायदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का, गिलगित के अवाम का होना है। 18वीं तरमीम का तहफ्फुज़ हम गिलगित बल्तिस्तान को इंशाअल्लाह ताला मिलके दिलवाएंगे। हमारा मुआशी पॉलिसी न सिर्फ हक़ रोजगार दिलवाएगा, मुआशी इंसाफ दिलवाएगा। अक्सर
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
6: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4।

रहमत सां दुआ आहे त अल्ला ताला कंदो जेको बि तव्हांजो हर पल आहे उहो ख़ुशियुनि सां गुज़रंदो ऐं कॾहिं बि तव्हां को ॾुखियो न ॾिसंदो ऐं सुबुह जेको तव्हांजो ॾींहुं गुज़रंदो तमामु घणो बहितरीन ऐं ख़ुशहाल वारी ज़िंदगी वारो गुज़रंदो। आमीन।

तोखे पल पल मुझा इशारा हुआ तदे वार मुझा बकारा हुआ हामा उन बहारू हुआ मस्त वणटण का खबर कोन हुई बस इन नजारा हुआ जवानिन असां जो नजरूं माणन जो पेंजा बंजी मारिया वया प्यारा हुआ सजण जोखे पांधन के सबनी थे चायो मगर नाज तुंजा निहारा हुआ। लिसनर्स प्रोग्राम दिल जी गाल में शामिल थे तमाम घणो आसान सवलो तरीको है मां तमाके बुझाइंदी लाथी नोट कयो पेंजो मोबाइल खणो राइट मैसेज ऑप्शन वञो एमआर लिखो स्पेस दियो केम सॉन्ग फरमाइश कयो या केने ना डेडिकेट कयो पेंजे गोठ या पेंजे शहर नाले लिखी 881 ते सेंड कयो यानी 8881 ते मोकलियो हलो तो खूबसूरत शमन मिलारी मीराली आवाज में तमाम घणो बेहतरीन सॉन्ग आए रात चंड लहे न पियो वार खोले सुतो है अच्छा तरह सॉन्ग के गजी इंजॉय कंदा हलूं था।

तोसां नी लॻो मुंहिंजो निंड फिटी आला, निंड फिटी रातिनि जाॻी कटियां। माण्हुनि लिखियो चरियो आ दीवानो, ओ दर्द छा ॼाण ही ज़मानो, तूं आ भेरो वेगो। मुंहिंजी निंड फिटी रातियूं जाॻी कटियां, मस्त करे पोइ मुंहुं थई मटायो, ओ दर्द मूं ते तो आ रुलायो, कयम कारो वॻो मुंहिंजी निंड फिटी रातियूं जाॻे कटियां। जोखियो पांधन बेवस फाथो, दर्द जूं जंहिं वटि नाहे को आथो, टुटो सिक जो सॻो मुंहिंजी निंड फिटी रातियूं जाॻे कटियां, तोसां नीह लॻो मुंहिंजी निंड फिटी अला निंड फिटी।

प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में शामिल थियण जो तमामु घणो आसानी सहुलो तरीक़ो आहे, मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां थी, नोट कयो। पंहिंजे मोबाइल खणो, राइट मैसेज ऑप्शन वञो, एमआर लिखो, स्पेस ॾियो, फरमाइश कयो या कंहिंजो नालो डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर नालो लिखी ट्रिपल 1 ते सेंड कयो, यानी 88 ते मोकिलियो।

0: वेलकम बैक सामिंत आईना
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ताडो सुठो
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी

वेलकम बैक सां मिनू तव्हां खे सॉन्ग तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। अवां ॿुधी रहिया GFM नेटवर्क। हुन सां गॾु असां सां सभई जेके बि टोटल असांजी समर स्टेशन आहिनि उहे बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। सखर, लड़कणा, मीरपुर खास, मातली, ऐं हुन खां अलावा नवाबशाह, जामशरो, नौशारा फ़िरोज़। प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि अव्हां जी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे मोरो जे लाइव स्टूडियो मां। ऐं हुन सां गॾु जी मां आहियां तव्हांजी पंहिंजी होस्ट RJ लीला सुमरो। प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि में शामिल थियण जो तमामु घणो ई आसान सवलो तरीक़ो आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदे हलां थी, नोट कयो। पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज वारे ऑप्शन में वञो, MR लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं सॉन्ग जी फरमाइश कयो या कंहिंजे नाल डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर जो नालो लिखी 881 ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। हलूं था असीं मैसेजनि तरफ़, जेके असांजे मैसेज पैनल ते मौजूदु आहिनि, तनि मैसेजनि खे बि असीं पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं। सिटी हालाणी खां जन असांखे मैसेज आयो आहे, सिस्टर मिशाल, माशाला तव्हांजो प्रोग्राम तमामु घणो प्यारो ऐं ख़ूबसूरत हली रहियो आहे। ऐं उर्स रंजन असांखे मतिलबु फरमाइश कई आहे त चवनि था त मुनवर मोलाइका सॉन्ग सुनबो में। मुनवर मोलाई जी आवाज़ में चवनि था त असां तो लाइ घेर आहियूं, वञी पूरा डे वधीक त तव्हां छा लिखियो, हाज़िर आऊं, कोशिशि कयां थी ऐं तव्हांजी फरमाइश ज़रूरु सॉन्ग पूरो कंदमि ऐं तव्हांखे आऊं पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थी। मोरो शहर खां जन असांखे मैसेज कयो आहे लांगा अमानुल्ला, फैज़ुल्ला, ज़ईफुल्ला ऐं मोहम्मद बख़्श असांजे प्रोग्राम में शामिल आहिनि। तव्हां सभु ॾिसंदासीं की आऊं पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थी ऐं प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि में शामिल थियण जो तमामु घणो ऐं आसान सवलो तरीक़ो मां पहिरियों तव्हांखे ॿुधाए चुकी, मूंखे वरी आऊं ॿुधाईंदे हलां थी, नोट कयो, पंहिंजो मोबाइल खणो, राइट मैसेज ऑप्शन वञो, MR लिखो, स्पेस ॾियो, कंहिं सॉन्ग पर मां चुकियो या कंहिंजे नाल डेडिकेट कयो, पंहिंजे घोट या पंहिंजे शहर नालो लिखी प्लेटफॉर्म ते सेंड कयो, यानी 8881 ते मोकिलियो। ॾिसंदासीं तमामु घणो ख़ूबसूरत ऐं प्यारो सॉन्ग आहे, राति गुज़र जाएगी अफ़साना कंहिं ते कंहिं ते, अचो त सॉन्ग खे गॾु इंजॉय कंदा हलूं था।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हरछंछर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। इदनान दवाखाना, नर्द अछी मस्जिद, दर्श रोड, मोरो। राब्ते लाइ फोन करियो 0301-3646-459। निजात बवासीर कोरस, सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम। जेकॾहिं
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

वेलकम बैक सामिन हुई तव्हांखे तमामु घणो सॉन्ग पसंदि आयो हूंदो असां तोलाए घेर आहियूं वञी प्यार ॾे पंहिंजनि खे वाकई हक़ीक़त आहे ऐं हिकड़ी ॻाल्हि मूंखे सम्झ नथी अचे त जीअं आऊं हिते आई आहियां तीअं त जेके मुंहिंजा प्यारा ॾिसंदा आहिनि उहे सभई भला मूंखां वधीक वटिया पिया आहियो मतिलबु मूंखां वधीक उहे दर्दीला सॉन्ग तमामु घणा ॿुधनि था जेकी बि लिसनर्स मूंखे मिलनि जिन्हनि बि मूंखे फरमाइश कई आहे अॼु ॾींहं ताईं मतिलबु अॼु माशाल्लाह मूंखे टियों चोथों महीनो आहे त जीअं हिते ज्वाइनिंग कई आहे त मूंखे जेके मुंहिंजा प्यारा ॾिसनि सभिनि मतिलबु इन ई सॉन्ग जी फरमाइश कई आहे मतिलबु तमामु घणा टफ टफ ॾुख वारा गाना बाबा मूंखां वधीक तव्हां सफ़ा सड़िया पिया आहियो छा ऐं ख़ासि करे राति जो अहिड़ा गमगीन गाना न ॿुधाईंदा कयो राति जो पोइ महबूब निंड में अचे त पोइ ख़्वाब में त पोइ बाबा रोई ॾियूं त पोइ सिक बि लॻे थी न इंसान खे त

कोट बाकर खान अबड़ो खान जन असा के मैसेज के अब्दुल हकीम सियाल नाइस प्रोग्राम सलाम बाजी तमाम घणी मेहरबानी अब्दुल हकीम तमा के आऊं पेने प्रोग्राम में भली कार चवा दू जन असा के चवे सलाम बाजी जी वालेकुम सलाम की है अब्दुल हकीम तमा के आऊं पेने प्रोग्राम में भली कार चवा दू पसंद अली बुरड़ो फ्रॉम मोरो खान जिन असा के मैसेज क्यों है नाइस शो सिस्टर जी मेहरबानी पसंद अली तवां जी जो तवां असन प्रोग्राम के बुधो पे आई असन प्रोग्राम के लाइक पे कयो जन फरमाइश के त आतिफ असलम का हमें कलाम सुनाए दिल मेरी माने ना एंड डेडिकेट उन्होंने क्यों सबने पेन दोस्तन के तमाम घणी मेहरबानी सब लिसनर्स जी जो तमाम मुझे प्रोग्राम बुधो पियो आई तमाम मुझे प्रोग्राम में खास टाइम कडी रात जो निंड जो टाइम विनाय आई मुझे प्रोग्राम पियो बुधो तमाम जी तमाम घणी मेहरबानी आई सबनी के प्रोग्राम में भली कार चवा थी।

सही ॻाल्हि आहे, राति जो पिरी रहे थी सघे इंसान आहे, ॻोठ ऐं जंग में पिरी ईंदा आहिनि घुमण फिरण, वरी उते धाड़ेल वग़ैरह बि हूंदा आहिनि, खतरा हूंदा आहिनि, इन जे करे राति पिरीअ खे हमेशह हराईंदा कयो। त लिसनर सिंगर मूंखे ॾींदा इजाज़त, वरी

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।